0: वाले सामने
1: यार बतूजुनो ने काउलो वायर कोडो लेर में माँ कपड़े चिकी निशन नमला कुकन चिना कुलतन नकी मल्ला कुवंडी ले इलमले Nanya malak pun sila poran nak kita singgah, sebenarnya nak kita ulingin, ia ramu sengudangan dan si petale, bahkan benar.